हुकूमत ने सन 2017-18 के तालीमी साल से किंडरगार्टन एजुकेशन स्कीम नाफिज कर रखी है। इस स्कीम में शामिल तमाम किंडरगार्टन सिर्फ उन बच्चों को दाखिला दे सकते हैं जिनके पास दुरुस्त रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात हों, यानी किंडरगार्टन दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC या किंडरगार्टन दाखिला पास AP। अगर वालदैन अपने बच्चों का दाखिला तालीमी साल 2027-28 के लिए किसी स्कीम में शामिल किंडरगार्टन में कराना चाहते हैं तो उन्हें सितंबर से नवंबर 2026 के दौरान में एजुकेशन ब्यूरो से अपने बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ERC या EAP के लिए दरखास्त देना होगी। वालदैन RC के लिए उस सूरत में दरखास्त देने के अहल होंगे कि उनका बच्चा 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले पैदा हुआ हो और तालीमी साल 2027-28 में किंडरगार्टन की नर्सरी K1 जमात में दाखिला ले रहा हो। दरख्वास्त दहिंदगान आई एम स्मार्ट मोबाइल ऐप या एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्तों और गाइडेंस नोट की नकल तालीम ब्यूरो की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं और होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के ज़िले दफातर से भी हासिल की जा सकती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए बराए करम दफ्तरी औकात में एजुकेशन ब्यूरो के किंडरगार्टन एडमिशन सेक्शन 2 से इन नंबरों पर राब्ता करें 3540-6808 या 3540-6811।

भारतगरी आम थी, शराब नोशी, जुए, बदकारी को बुरा नहीं समझा जाता था, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आखिर अल्लाह की रहमत जोश में आई और उसने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इरशाद बारी है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वाकई अल्लाह के नबी सारी दुनिया तमाम मखलूकात के लिए रहमत हैं। आपकी तशरीफ आवरी से कबल लोग ज़रा ज़रा सी बात पर तलवारें निकाल लिया करते थे। एक कबीला दूसरे कबीले का, एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान के खून का प्यासा था। नफ़रत और इंतकाम का ये जज्बा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता था। लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद दुनिया ने इस मंजर को भी देखा कि एक दूसरे के खून के प्यासे और बात बात पर एक दूसरे

साथ लाया, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्णों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बीड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। बच्चों को किसी किस्म के नुकसान का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई बच्चा बदसलूकी का शिकार नजर आए तो मदद का हाथ बढ़ाएं, इससे एक सानहा रुनुमा होने से बच सकता है। बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए कदम बढ़ाएं। बच्चों से ज्यादती जुर्म है, बच्चों के साथ बदसलूकी की इत्तला देना हर एक की जिम्मेदारी है। मदद के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हॉटलाइन 2343-2255 पर कॉल करें या देखें SWD.gov.in।

0: पाकिस्तान दिल।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद जमशेद और आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम।
2: प्रोग्राम के आखिर में नातिया कव्वाली, गुलाम फरीद साबरी कव्वाल और साथियों की आवाज़ों में। इसके साथ ही हांगकांग की शाम की आज की ये महफिल अपने अख्तिताम को पहुंची, जिसे पेश करने में तआवुन किया होम अफेयर्स डिपार्टमेंट हांगकांग ने। RTH के रेडियो 3 पर हम हाजिर होते हैं हर इतवार की शाम 8 बजे की खबरों के फौरन बाद। हमारी नशियात आप इंटरनेट पर लाइव या गुज़िश्ता एक बरस के प्रोग्राम आर्काइव में भी सुन सकते हैं। विजिट कीजिए RTH के रेडियो 3 की वेबसाइट। अपने स्मार्टफोन पर चलते फिरते सुनने के लिए RTHK की ऐप्स डाउनलोड कीजिए, जिनके नाम है RTHK ऑन द गो या RTHK माइन। आइंदे एतवार की शाम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान आबिद अली बेग को इजाज़त दीजिए। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। शब्बा खैर और अल्लाह।